पका पकाते हो कीते तू क्या माँ की ना की क्या माँ तरा तरा की ए यक्या ना ते आता कुदा ए चियो ए क्या ए हुमा वान वान हरमाई ते तो